0: और लोनियों पर स्पीक चंद डोंग में दिखे मॉल जालू पी
1: जब तो बिरोजगार कलर आ वाका टेकिंग कॉम
2: पे पिता ही किंग तो बहुत फटा हुआ
1: तो तू अल्लाह ओके मैं
3: जीव तो तू है आई तू बंदर ये मुकोली बंदर वाला तू यू आर कौन है क्या ने माँ वो तो मैं कौन है लोग पार ना चार चार नहीं ना वाट तू भी वो तू
4: मैं चार ना वार ने
0: Hello, weng e chia bichel duju kamo kero iri jemi duju mo beru katime e chia birman alor alor aping gimelo dier wajo punye lurange manyen we balo tien paju ke yom chun ma pegir mani e de prime time so chake e chawa pa wia rio wa chawa def meko dirko e pier bor wia bungwen ton nea beach speak FM duan ma pegir
5: The Prime Time Show.